0: Avicii. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: आपने एक रील स्किप की, एक नया गाना रिलीज हो गया, एक ट्रेलर आ गया, फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, किसी ने कुछ पोस्ट किया, और इसी बीच शायद एक खूबसूरत गाना आपके पास से निकल गया बिना आपके नोटिस किए। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कंटेंट की कमी नहीं है, अटेंशन की कमी है, और शायद इसलिए आज सबसे मुश्किल काम अच्छा गाना बनाना नहीं, नोटिस किया जाना है। आज मैं बात करने वाला हूं उन गानों की जो भीड़ में अपनी जगह बना रहे हैं, उन सिंगर्स की जिनकी आवाजें आज भी गोल्ड हैं, लेकिन माइक्रोफोन्स कहीं और ही लगे हुए हैं, उन सुपरस्टार्स की जो गायब हैं, और उन आर्टिस्ट की जो एल्गोरिथम को हराकर सीधा आपकी प्लेलिस्ट तक पहुंच गए हैं। हाय, मैं हूं सुरेन, और इस एपिसोड में हम नॉइज नहीं म्यूजिक सुनेंगे। This is India's most definitive Hindi film music countdown, the Mirchi Top 20. And talking of number 20, we've got A.R. Rahman, Irshad Kamil, Vedang Raina and Nilanjana Ghosh. Ek aisa gaana jo pata nahi kyun main har jagah sun raha hoon. This is Mascara from Main Wapas Aunga. Number 20.

What a beautiful song, man. Jagmag Jagmag Jhilmil Jhilmil, Manoj Bajpai ki incredible film Governor se. Is hafte number 19 par ye debut kar raha hai. And mujhe pura yakeen hai ki jisne bhi abhi ye gana suna hoga, uske chehre par ek muskurahat zarur aayi hogi. लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अगर ये गाना किसी छोटी फिल्म का हिस्सा ना होता तो शायद आज और ज्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे होते, और यही हिंदी फिल्म म्यूजिक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और सबसे बड़ी सच्चाई है। आजकल गाने डिस्कवर नहीं होते, गाने डिलीवर किए जाते हैं। जो दिखाया जाता है हम वही सुनते हैं, जो प्रमोट किया जाता है हम वही गाते हैं, और जो कहीं पीछे छूट जाता है, चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसे ढूंढने का वक्त किसी के पास है ही नहीं। ये गाना अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया है और जावेद साहब ने लिखा है, और मेरी डिक्शनरी में एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, जब जावेद साहब लिखते हैं ना तो लफ्ज कभी कैजुअल नहीं होते। कुछ महीने पहले उन्होंने 120 बहादुर में भी एक गाना लिखा था जिसे अमित त्रिवेदी ने ही कंपोज किया था, एंड वो गाना मेरे लिए छुपा हुआ हीरा था।

एंड देन आई रियलाइज कि इन दोनों ने सिर्फ 3 एल्बम्स में साथ काम किया है, लेकिन आयशा से लेकर आज तक जब भी साथ किया है कुछ ना कुछ यादगार दिया है।

अरे यार, ये गाना मुझे आज भी कमजोर बना देता है। अजीब बात है ना, छोटी फिल्मों को अच्छे गानों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें सबसे कम सुना जाता है। एंड देन यू गॉट दोज बिग फ्रेंचाइज फिल्म्स जिनमें एक ओके ओके गाना भी पॉपुलर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 18 पर दिस इज चटनी फुल भोजपुरी तड़का, एंड ये है धमाल 4 से।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Surin ke saath only on Mirchi. It's hot.
1: Number 70. Poopa.

फहीम अब्दुल्ला का सैयारा पिछले साल का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक एंथम था, हैंड्स डाउन, राइट? और इस हफ्ते भी वो नंबर 17 पर मौजूद है। लेकिन इस गाने को सुनते हुए एक ख्याल आया, बॉलीवुड का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक क्लीशे आखिर क्या है? ये नहीं कि प्यार अधूरा रह जाता है, ये है कि जब दिल टूटता है तो माइक्रोफोन हमेशा लड़के को ही मिलता है। जरा सोचिए ना, चाहे कितना ही पॉपुलर गाना क्यों ना हो। तड़प तड़...

0: या फिर एक और टूटे दिल की आवाज।
1: सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना,
0: या फिर ये वाला एंथम,
2: क्योंकि तो

0: माय गॉड, हर जेनरेशन का डेफिनेटिव हार्ट ब्रेक एंथम। एक आदमी गा रहा है, एक आदमी टूट रहा है, एक आदमी याद कर रहा है, और धीरे धीरे बॉलीवुड ने हमें ये बिलीव करवा दिया कि हार्ट ब्रेक का असली ब्रांड एम्बेसडर मर्द ही होता है। ये बात ही अजीब है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में हार्ट ब्रेक दो लोगों का होता है, लेकिन गाने में रोता हमेशा एक ही है, इट्स द मैन। इस हफ्ते नंबर 16 पर है एआर रहमान का वो नहीं फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, एक ऐसा ट्रैक जो सिर्फ मोहब्बत के खोने की बात नहीं करता बल्कि किसी अपने को खोने की बात करता है, और शायद इसलिए ये इतना गहरा लगता है। लेकिन आज मुझे उस दूसरी आवाज की बात करनी है, वो लड़की जिसका दिल टूटा है, जो बॉलीवुड में हमेशा थी, बस उसे उतनी बार सेंटर स्टेज नहीं मिला, क्योंकि औरतें भी टूटती हैं, उनका भी दिल टूटता है, उनकी भी नींद उड़ती है, बस उनके दर्द को एंथम कम बनाया जाता है, और जब कभी बनाया जाता है तो कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने पैदा होते हैं। यू हर्ड दिस सॉन्ग इन रावण, नंदिनी श्रीकर की आवाज, एक ऐसा गाना जो हार्ट ब्रेक को चीख कर नहीं खामोशी से जीता है। थैंक यू विशाल एंड शेखर, हियर इज माय रिवाइंड ट्रैक, दिस इज भरे नैना।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

हार्डी संधू और प्रीतम दा का गाना फ्रॉम कॉकटेल वल्ला इस हफ्ते नंबर 15 पर पहुंच गया है। और एक बात तो माननी पड़ेगी, पंजाबी म्यूजिक सिर्फ बॉलीवुड का हिस्सा नहीं रहा, पंजाबी म्यूजिक खुद एक पैरेलल यूनिवर्स बन चुका है। और उस यूनिवर्स का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है गुरु रंधावा। अब गुरु के गानों के बारे में सब लोग बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ। मुझे लगता है कि गुरु ने एल्गोरिथम को ही क्रैक कर लिया है, क्योंकि वो गाने रिलीज नहीं कर रहा, वो मोमेंट्स रिलीज कर रहा है। पहले गाने हिट होते थे, फिर लोग उन पे डांस करते थे, आज लोग डांस करते हैं और गाने खुद ब खुद हिट हो जाते हैं। और गुरु ने ये गेम सबसे पहले समझ लिया। आपको ये गाना कत्ल याद है? बिल्लो तेरे

0: वो गाना दैट वेंट वायरल ओवरनाइट। फिर एक के बाद एक नए ड्रॉप्स, नया हुक स्टेप, नया ट्रेंड, नई रील, नया वायरल मोमेंट। एंड देखते ही देखते गुरु वाज एवरीवेयर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, शादियों में, जिम प्लेलिस्ट में, कार के स्टीरियोज में। एक गाना रगों में घुसा नहीं कि गुरु एंड्स अप ड्रॉपिंग अनदर बैंगर। पिछले एक साल में गुरु के गानों को 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं, नॉट मिलियंस, बिलियंस। एंड मुझे लगता है गुरु रंधावा सिंगर से ज्यादा अब एक आर्किटेक्ट बन चुके हैं। वो सिर्फ म्यूजिक नहीं बना रहे, वो इंटरनेट की आदतों को डिजाइन कर रहे हैं। और शायद इसलिए मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता जब उनका कोई नया गाना काउंटडाउन पर आ जाता है, लोगों को पसंद भी आने लगता है, क्योंकि गुरु आजकल हिट्स नहीं क्रिएट कर रहे, वो मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। This one is from Dhamaal 4. It's debuting this week on number 14. Yeah!
1: Number 14.

0: Mirchi. It's hot. Only on Mirchi. It's hot.
1: Number 13.

आई थिंक मैंने धुरंधर 2 कम से कम 4 बार देख ली है फ्रॉम द टाइम इट ड्रॉप्ड ऑन नेटफ्लिक्स एंड इतनी लंबी है दैट इट कुड हैव बीन अ वेब सीरीज मैन बट यस देखते वक्त एक थॉट जरूर आया यार कितनी रेयर हो गई है ये बात जहां एक फिल्म आती है और फिल्म भी काम करती है और म्यूजिक भी काम करता है एक और अच्छा एग्जांपल है अगला गाना नंबर 11 पर तू ही दिसदा बाय अरिजीत एंड निकिता गांधी फ्रॉम भूत बंगला लेकिन आजकल बॉलीवुड में फिल्म और म्यूजिक का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया है या तो फिल्म कमाल की होती है और गाने याद नहीं रहते या फिर गाने दिल में जगह बना लेते हैं और फिल्म 2 हफ्तों में दिमाग और थिएटर दोनों से निकल जाती है और ऑनेस्टली दूसरा वाला केस ज्यादा कॉमन है बॉलीवुड को अभी भी ग्रेट म्यूजिक बनाना तो आता है बस उसके लेवल की फिल्म्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया है अब मैं वो पुराने एग्जांपल्स झूम बराबर झूम रॉय अनजाना अनजानी इनकी बात नहीं करूंगा दैट इज प्रीटी ओल्ड पिछले 10 सालों की बात करते हैं सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे लिए था लव आजकल इम्तियाज अली प्रीतम और एक साउंड ट्रैक जो आज भी जिंदा है शायद

शायद। देखो फिल्म के बारे में लोग क्या सोचते हैं उस पर एक पूरी डिबेट हो सकती है, गाने के बारे में बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर आई ए दिल मुश्किल और टाइटल ट्रैक ने फिल्म से भी लंबी जिंदगी जी ली।

और फिर एक साउंड ट्रैक जो मेरे दिल के बहुत करीब है, अमित त्रिवेदी का फितूर, एक ऐसा एल्बम जहां म्यूजिक ने वो इंपैक्ट क्रिएट किया जो फिल्म कभी नहीं कर पाई। कुछ गाने हिट होते हैं, कुछ गाने फिल्म से बड़े हो जाते हैं, और फितूर का टाइटल ट्रैक उनमें से एक है। Here on my special request, this is Fitoor by Arijit Singh. Special request.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 10.

0: कॉकटेल 2 से बंधु 2.0 इस हफ्ते नंबर 10 पर डेब्यू कर रहा है एंड मुझे इस गाने से सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीतम दा ने तो खुद कहा था कि लोग ट्रोल भी करेंगे और कंपेयर भी करेंगे, और कंपेयर तो करेंगे ही, लेकिन बंधु 2.0 सुनते वक्त आई गॉट अ फीलिंग मैन, कॉकटेल 2 इज अ गुड एल्बम, लेकिन कॉकटेल 1 वाज अ डैम गुड एल्बम। कॉकटेल 1 एक पूरी दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहां हर गाना अलग आसमान के नीचे रहता था। एक तरफ था अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी,
1: मोला

पूरा गाना ऐसे लगता था जैसे दोस्तों ने जिंदगी को कंधों पर उठा रखा हो और दुनिया को कहा हो यार कल देखेंगे, एंड देन यू हैड सेकंड हैंड जवानी।

0: बिल्कुल बेपरवाह, बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल उस उम्र की तरह जहाँ कॉन्सिक्वेंसेस नाम की चीज डिक्शनरी में होती ही नहीं थी। और फिर इन सबके बीच एक गाना, ना सबसे लाउड, ना सबसे कमर्शियल, ना सबसे वायरल, बस सबसे सच्चा। एक ऐसा गाना जो शोर खत्म होने के बाद भी साथ रहता था, जैसे समंदर के किनारे रात के 2 बजे बैठकर अचानक किसी की याद आ जाती है, जैसे एक पुरानी दोस्ती, जैसे एक अधूरी मोहब्बत, जैसे जिंदगी का वो पन्ना जिसे आप कभी बंद ही नहीं कर पाए। कॉकटेल 2 मुझे पसंद है, लेकिन कॉकटेल 1 मुझे याद है। और म्यूजिक में पसंद और याद के बीच जो फासला होता है ना, उसे ही टाइमलेसनेस कहते हैं। Here is my version of Timeless, Mohan Kannan और Sunidhi Chauhan की आवाज में। It's my pick of the week, ये है यारियां।
1: Pick of the week.

0: जाइए सजना इस हफ्ते भी टॉप 10 में है, इट्स अ नंबर 8 एंड मुझे लगता था कि बॉलीवुड के बारे में मुझे सब कुछ पता है, फिर धुरंधर आई और मुझे रियलाइज हुआ मुझे कुछ नहीं पता है। सीरियसली दिसंबर में ऑडियंस ने पहली बार धुरंधर की दुनिया में छलांग लगाई। 7 महीने, 2 फिल्में, 3,200 करोड़ रुपए और आज धुरंधर बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। लेकिन इस फिल्म का सबसे बड़ा स्टार गायब है। नो इंटरव्यूज, नो विक्ट्री लैप, नो एंडलेस मीडिया अपीयरेंसेस, नो सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी हेडलाइंस। रणवीर सिंह इसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मुझे याद ही नहीं कि बॉलीवुड में ऐसा लास्ट कब हुआ था भाई। हमने राकेश बेदी जी को सुन लिया, हमने दानिश पंडोर को सुन लिया, हमने माधवन को सुन लिया और अब हम फाइनली मेजर इकबाल को भी सुन लेंगे।
1: जब आप एक्टिंग करते हैं या जब आप काम पे जाते हो, एक ही इंसान पे वो फिल्म नहीं बनती है। इट्स अ कलेक्टिव अप्रोच दैट यू हैव टू टेक। तो आप देखते हो कि जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो वो आपको देख कितना रहा है, यू नो, वो कितना ओपन है। और रणवीर हैज बीन वेरी वेरी ओपन सजेशंस के लिए, रिहर्सल्स में, काम करने के टाइम पे। और सारी जो टीम थी वो वैसी थी, जितने भी डिपार्टमेंट थे, अगर हेयर हो, मेकअप हो, कॉस्ट्यूम्स हो, म्यूजिक हो, एक्शन हो, यू नो, डायलॉग हो, उनको इतनी छूट दी गई है बाय आदित्य धर। और इतनी ओपननेस थी उनके माइंड में कि वो जानते हैं कि ये आपका काम है, तो वो अलाउ करते हैं सभी को कि वो अपने ट्रिपल ए परफॉर्मेंस या ट्रिपल ए गेम टेबल पर ला।
0: अर्जुन रामपाल को सुनने के बाद एक बात समझ आ गई है, शायद धुरंधर की सक्सेस किसी एक सुपरस्टार की सक्सेस नहीं है, शायद ये एक रेयर फिल्म है जहां हर डिपार्टमेंट ने अपना ए गेम लाकर टेबल पर रख दिया। शायद इसलिए फिल्म इतनी बड़ी हिट बन गई। लेकिन फिर भी यार, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म का हीरो अब भी खामोश है और जब तक वो बोलेगा नहीं, मिस्ट्री जिंदा रहेगी। नंबर 7।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट। Only on Mirchi. It's hot. Number 5. Wow.

0: धुरंधर का आरी आरी इस हफ्ते नंबर 4 पर है और एक बात माननी पड़ेगी, बॉलीवुड को नॉस्टैल्जिया से बहुत प्यार है। पुराने गाने चाहिए, पुराने हुक्स चाहिए, पुरानी यादें चाहिए, बस पुराने सिंगर्स नहीं चाहिए। जरा सोचिए, धुरंधर में ये गाना जो आपने अभी सुना आरी आरी, वो है तम्मा तम्मा लोग ये है, और साथ में है उदित जी की आवाज में ये वाला गाना। एंड देन हाल ही में यू ऑल्सो हर्ड है जवानी तो इश्क होना है का ये गाना कॉल्ड चुनरी चुनरी, जिसमें ओरिजिनल सिंगर अभिजीत नहीं है।
1: तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए।
0: And guess what? अगला गाना काउंटडाउन पर है ऊंचा लंबा कद, एक और रिक्रिएशन। एंड मुझे रिक्रिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर है, जिन आवाजों ने इन गानों को एवरग्रीन बनाया, फॉरएवर कूल बनाया, वो आवाजें आज कहाँ हैं? आनंद राज आनंद बेंच पर, अभिजीत भट्टाचार्य बेंच पर, उदित नारायण बेंच पर, रेयरली हर्ड, लेकिन उनके गाने हर दूसरे फ्राइडे को कम बैक कर रहे हैं। बॉलीवुड को गाना याद है, गाने वाला नहीं। और फिर पिछले हफ्ते संडे के दिन इत्तेफाक से एक वीडियो देखा और स्क्रीन पर आए अदनान सामी, और फिर वही गाना जिसके चलते अदनान से प्यार हो गया था।

क्या आवाज है यार, क्या कंट्रोल है, क्या वॉर्म्थ है। सबसे बड़ी बात, द सॉन्ग मेक्स यू फील, द सॉन्ग गिव्स यू फील्स। और तब मुझे एक सवाल खटका, व्हाई इज अदनान सामी सिटिंग एट होम? सीरियसली, आज के कितने सिंगर्स हैं जो अदनान सामी के साथ एक स्टूडियो में खड़े होकर कंपीट कर सकते हैं? यार बहुत कम। बॉलीवुड का ये सच में अजीब लॉजिक है, पुरानी आवाजों की लेगेसी कैश करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उन आवाजों को माइक्रोफोन नहीं देना है। खैर, जब तक सिंगर्स वापस नहीं आते, उनके गाने तो वापस आते ही रहेंगे, बॉलीवुड छोड़ेगा नहीं। और इस हफ्ते नंबर 3 पर है वेलकम टू द जंगल से आनंद राज आनंद साहब का ही गाना ऊंचा लंबा का और एवर। नंबर 3।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
0: Only on Mirchi. It's hot.
2: Number 2.

बशुका इस हफ्ते भी नंबर दो पर है यार। मुझे तो लगा था कि ये गाना सीधा नंबर वन तक पहुंच जाएगा इस बार, लेकिन एक बार हम बार बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इंडिया को उसके जासूस बहुत पसंद है, और इस वक्त इंडिया का सबसे फेवरेट जासूस स्पाई है हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह रांगी, और शायद इसलिए शरारत 19 हफ्ते बाद भी नंबर वन पर बैठा हुआ है। लेकिन स्पाइस की बात निकली है तो 3 जुलाई को दो नए स्पाइस इस लंबी कतार में जुड़ने वाले हैं, आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ। द फिल्म इज कॉल्ड अल्फा, और मुझे लगता है अल्फा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अल्फा खुद नहीं है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली धुरंधर है, क्योंकि धुरंधर के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस टोटली बदल चुकी हैं। अब ट्रेलर में सिर्फ एक्सप्लोजन्स काफी नहीं है, अब सिर्फ ग्लोब ट्रॉटिंग काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन एंट्रीज काफी नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली अल्फा का ट्रेलर देखकर मुझे बार बार लगा कि मैं कुछ नया नहीं देख रहा हूं, वही फेमिलियर ट्रोप्स, वही फॉर्मूला, वही टेम्पलेट। यस, बैकग्राउंड स्कोर के कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली इंप्रेसिव हैं, लेकिन जब एलीट असैसिंस की दुनिया में ऐसा डायलॉग आए कि वुल्फ की बेटी वुल्फ ही तो होती है, तो थ्रेट कम और टेलीविजन सीरियल ज्यादा लगने लगता है। एंड मे बी दैट्स व्हाई मैं अल्फा को अभी जज नहीं करना चाहता हूं, मैं उसे सिर्फ विश करना चाहता हूं द वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि पोस्ट धुरंधर दुनिया में सरवाइव करना आसान नहीं है। अरे यार, कम से कम ऋतिक रोशन को ही सरप्राइज रहने देते, ट्रेलर में पूरी फिल्म तो वैसी दिखा दी। खैर, जिस पाए ने वो बेंचमार्क सेट किया उसका राज अभी खत्म नहीं हुआ है। जैस्मिन सैंडलर्स और मधुबंती बागची, यालीना और हमजा की शादी वाला गाना दिस ए शरारत 19th week at number 1।

0: एक और हफ्ता खत्म, कुछ गाने चार्ट्स पर चढ़ गए, कुछ नीचे आ गए और होपफुली कुछ नए ऑब्सेशंस मिल गए। ये था मिर्ची टॉप 20 का लेटेस्ट। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक नॉइज को कम सुनिए, म्यूजिक को ज्यादा। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। 98.3 Mirchi, it's hot.
2: Mirchi, it's hot.

0: DJ Rigid.
1: वीकेंड ऑफिशियली ऑन और आज रात का सीन सिंपल है बॉस। एसी कम, डांस फ्लोर ज्यादा, क्लब मिर्ची पे डीजे रिचर्ड के साथ फुल वॉल्यूम, फुल सेलिब्रेशन, साथ में मिर्ची ओयोंतिका और वर्ल्ड कप फीवर भी बैकग्राउंड में चालू है, ब्लड स्ट्रीम में चल रहा है, गोल हो या ग्रूव, आज रात सब अलाउड है। चलो गर्मी बढ़ाते हैं, लेट्स बिगिन क्लब मिर्ची।

कुछ लोगों की लव स्टोरी रोमांटिक होती है और बाकी सबका लव स्टोरी विद फुटबॉल कंटिन्यूज. टीचर रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, वेलकम बैक ऑन क्लब मिर्ची.

बट सेफली महफूज रहो यू सेक्सी बैक, ड्राइव मत करना, सेलिब्रेशन हैवी हो गया है। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योतिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची।

वीकेंड की अटेंडेंस लग चुकी है. वेलकम बैक एवरीबॉडी, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ, एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर. ओ साकी साकी कमिंग अप राइट नाउ.

आदत न जावे कोई खाही शिवाओं की ओ साकी साकी ने साकी साकी आपस आदत न जावे कोई खाही शिवाओं।

एनर्जी सुन रहे हैं तो जन्नत यहाँ, वीकेंड की जन्नत का एड्रेस यही तो है। यहाँ पे डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपको अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं।

अटेंडेंस लग चुकी है. वेलकम बैक एवरीबॉडी, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ, एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर. ओ साकी साकी कमिंग अप राइट नाउ.

आप पास आवाज़ न जाए कोई बाजी शिवा।

जी सुन रहे हैं तो जन्नत यहाँ वीकेंड की जन्नत का एड्रेस यही तो है। यहाँ पे डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपको अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं।

मेरे प्यार का सजा चखना ओए मखना ओए मखना ऐसे सचना अब अखना ओए मखना ओए मखना तेनू लगा मैं।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

Mirchi. It's hot.

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain the Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
1: Devdutt ka day starter. Day starter.
3: तो आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। क्यों हनुमान? बिकॉज यू नो टुडे मॉर्निंग मैं सूर्य नमस्कार कर रहा था। डॉक्टर्स हैव टोल्ड मी कि सूर्य नमस्कार सुबह करना ही है बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट। और मैंने ये सुना है कि सूर्य नमस्कार वॉज डिजाइंड बाय हनुमान जी, और हनुमान जी ने ये सूर्य नमस्कार किया था क्योंकि उनके गुरु थे सूर्य भगवान। द सन वॉज हिज टीचर, हिज गुरु। तो एज ए दक्षिणा उन्होंने सूर्य नमस्कार की निर्माण की थी। तो जब मैं सूर्य नमस्कार आज कर रहा था तो हनुमान जी की याद आ रही थी, एंड आई सेड यू नो व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट द डे देन बाय डिस्कसिंग हनुमान जी के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में। क्योंकि देवदत्त पटनायक शो में हम क्या डिस्कस करते हैं? हम वेद पुराण, हमारे रीति रिवाज के बारे में डिस्कस करते हैं, यज्ञ हवन पूजा का डिस्कशन करते हैं, उत्सव के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारी कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आध्यात्मिक कल्चर है, जो भारत की एक परंपरा है, हमारी संप्रदाय है, एंड दीज थॉट्स इन अ वेरी पॉजिटिव सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्रूव कर सकता है। यू नो सूर्य नमस्कार फॉर एग्जांपल हेल्प्स आवर बॉडी, एंड यू नो यू लुक एट द मॉर्निंग राइजिंग सन एंड द सन इज टेलिंग यू गेट अप एंड मूव ऑन, एंड दैट्स व्हाट आई डू। सो आज पूरे दिन, आज पूरे शो में हम डिस्कस करेंगे हनुमान जी के बारे में, मारुति के बारे में, अंजनेय के बारे में, उनके अलग अलग कहानियों के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
2: शो
0: माइथोलॉजी का वो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जो सबसे पहले हनुमान के मुंह से निकला, क्या था बताएंगे देवदत्त।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
1: कल भी आज भी
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आज हम हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं और हनुमान जी की जब बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज जो हमारे मन में आना चाहिए इज अबाउट स्ट्रेंथ, बिकॉज हनुमान जी इज वेरी स्ट्रांग। यू नो, एक चीज हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वी हैव बिकम वेरी मॉडर्न। यू नो, आजकल लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, पहले जमाने में हम लोग बैकवर्ड थे, अभी हम यू नो वी हैव बिकम कूल बिकॉज हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास गाड़ियां हैं। बट यू नो, एक चीज कनेक्ट करता है सब कुछ। यू नो, कल भी आज भी सब समय इट ऑल टाइम्स देयर इज वन थिंग व्हिच कनेक्ट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य जो है ना वो असुरक्षित होता है, इनसिक्योर होता है, एंड वी आर ऑल इनसिक्योर। कुछ ना कुछ, जितनी अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग्स आर इनसिक्योर। और जब हम इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो भगवान की बात आती है, और हिंदू धर्म में हनुमान जी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि ही इज, जैसे बनारस में कहते हैं, वो संकट मोचन है। ही टेक्स अवे द प्रॉब्लम्स, हमारे जो असुरक्षता है ही टेक्स इट अवे, एंड ही इज अ वेरी यूनिक गॉड, बिकॉज एक बलवान तो है ही, उनके हाथ में तो गदा होता है, एंड इज वेरी वेरी स्ट्रांग, बट एट अनदर लेवल ही इज ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल। वो कविताओं से जुड़े हुए हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि पहली बार संस्कृत शब्द उन्हीं के मुंह से निकला था। सो ही इज अ विद्वान एज वेल एज बलवान, एंड वी ऑलवेज ट्राइंग टू सेपरेट इट। हम हमेशा बोलते हैं कि जो बलवान होता है वो विद्वान नहीं हो सकता, और जो विद्वान होता है वो बलवान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यू कैन गो टू द जिम एंड बी यू नो स्ट्रांग एंड डू एक्सरसाइज एंड बी गुड इन स्पोर्ट, बट यू कैन ऑल्सो बी गुड इन स्टडीज, एंड यू कैन बी अ स्मार्ट गाय, यू कैन गो टू द बेस्ट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, बिजनेस। यू नो, हम ये डिवाइड करते रहते हैं दुनिया को, और आई थिंक ये आइडिया है। मैं जब भी हनुमान के बारे में सोचता हूँ मैं बोलता हूँ कि कल भी वो रेलिवेंट थे, आज भी वो रेलिवेंट हैं, क्योंकि वो बलवान विद्वान हैं। वो हमारे भीतर के पशु को जागृत करते हैं, रिमाइंड्स अस दैट देयर इज एन एनिमल इनसाइड अस, और हमें मनुष्य बनना है। यू नो, ही इज अ वानर, वन का नर। मीन्स सम पीपल से इट इज मंकी, सम पीपल से इट इज एप लाइक मैन, सम से इट इज अ ट्राइबल पर्सन, लेकिन क्या है कि ये एक कॉन्सेप्ट है। आर जर्नी, हमारी जो यात्रा है, इज फ्रॉम पशु टू पुरुष एंड टू बिकम बलवान एंड विद्वान। ऐसे ही बातें हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ लॉट्स ऑफ स्टोरीज आर कमिंग योर वे। वी आर गोइंग टू डिस्कस हनुमान जी के स्टोरीज, नॉट जस्ट फ्रॉम रामायण बट फ्रॉम मेनी फोक ट्रेडिशंस। तो स्टे ट्यून्ड।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान ने कैसे तोड़ा रावण का घमंड, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। माय फेवरेट हनुमान स्टोरी इज जब हनुमान रावण को मिलता है लंका में, एंड दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी। तो रावण इज द किंग ऑफ लंका, राक्षसों के राजा हैं, ही इज एजुकेटेड, ही नोज नाट्य शास्त्र, उन्हें गंधर्व विद्या, उनको वेदों का ज्ञान है, उनको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, वास्तु शास्त्र का ज्ञान है, ही इज एजुकेटेड एंड इज वेरी पावरफुल। उनके पास पुष्पक विमान है, वो सोने के लंका में राज करते हैं, और उनको पता चलता है कि उनके अशोक वाटिका में एक बंदर ने कुछ तो गड़बड़ किया है, और बंदर को पकड़ के लोग लेके आ रहे हैं। एक बंदर कौन है? और जब बंदर आता है उसके सामने, वो बंदर संस्कृत में बात करता है उनके साथ, एकदम परफेक्ट संस्कृत में बात करता है। तो ही शॉक्ड, बिकॉज संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है, विद्वानों की भाषा है, ये बंदर कैसे बात कर सकता है? और फिर वो कहता है, बंदर बहुत ही बहुत डेंजरस शब्द बोलता है, कि कहता है कि मैं राम का दूत हूँ, आई एम अ मैसेंजर ऑफ राम। तो अगर मैं दूत हूं तो यू शुड ट्रीट मी लाइक अ दूत, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। आप मुझे बांध के लाए हो यहाँ पे, मुझे एक आसन दीजिए, मेरा सत्कार कीजिए, ताकि मैं आपको एक मैसेज दे सकूं। और रावण कहता है कि बंदर, दूत, राम, ये कौन है? एंड ही इज लाइक क्वाइट डिस्गस्टेड, बहुत डिसमिसिव होता है कि चल चल, अपने आप को समझ रहा है राम दूत। तो हनुमान जी बोलते हैं कि देख, कोई भी तुम्हारे घर में आता है ना, तुम उसे सत्कार करते हो, इंसल्ट नहीं करते हो, मैं तुम्हारे घर पहले बार आया हूँ, यू शुड ट्रीट मी नाइसली। और अगर तुम, यू डोंट ट्रीट मी नाइसली, मेरा इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लूंगा, तुम अगर मुझे आसन नहीं दोगे तो मैं अपने आप को आसन दे दूंगा। और अपनी पूंछ से वो एक आसन बनाते हैं, और एक ऐसे आसन बनाते हैं जो रावण के सिंहासन से ऊपर होता है। मतलब रावण जो हमेशा सब लोगों को नीचे देखता है, वो हनुमान जी को ऊपर देखता है, और उसका घमंड वहां पे इज डिस्ट्रॉयड, कि ये बंदर संस्कृत बोलने वाला उसको एक सेकंड में बताता है कि भैया तेरी औकात क्या है। ये जो स्टोरी है ना, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, लेकिन सबको समझ में आता है। बताने से पता चलता है कि रावण हमारी जिंदगी में बहुत, रावण होते हैं, हम भी रावण होते हैं, सबको, हम चाहते हैं कि सब हमारे नीचे बैठे रहे, हम लोगों को, वी जज पीपल कि कैसे लोग होने चाहिए, बट सामने वाला हनुमान हो सकता है और वो हमें औकात दिखा देगा बहुत ही शांति से। और ये कहानियों में से ऐसी छोटी छोटी ज्ञान मिलती है, हमारा जो संस्कृति है, भारत धर्म है, हमारा जो कल्चर है, वो कहानियों के माध्यम से आता है। जैसे ये सो एक छोटी सी एपिसोड रामायण की, हनुमान जी और रावण के बीच में। एंड ऐसे ही स्टोरीज आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। तो स्टे ट्यून्ड
1: ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: Mirchi, it's hot. तो वेलकम टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान को डिस्कस कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉड्स इन हिंदुइज्म।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो,
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: गांव-गांव में उनकी मूर्तियां होती हैं, पूजा होती है। सो इफ आई एम श्योर यू हैव मेनी क्वेश्चंस ऑन हनुमान, तो जो भी क्वेश्चन है प्लीज पिक अप द फोन एंड आस्क मी द क्वेश्चन, आई एम एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू। हेलो, देवदत्त हियर।
3: हाय, माय नेम इज अक्षता एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई। मेरा क्वेश्चन ये है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या?
0: थैंक्स अक्षता फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जो सिंदूर है, लाल रंग जो होता है, ये भारत में से मंगल मतलब ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है, ऑस्पिशियस कलर माना जाता है, और हनुमान जी को हम मंगल मूर्ति भी मानते हैं। सो इट इज़ अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस, इसलिए उनको लाल रंग दिया जाता है। जैसे गणपति जी को भी मंगल मूर्ति मानते हैं, इसलिए उसको लाल रंग दिया जाता है। सो लाल रंग मांगल्य, मांगल्य इज प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस, गुड लक, चार्म, तो ये देवी के साथ जुड़ा हुआ है। और नॉर्मली लाल रंग हम देवी को जोड़ते थे, और बोथ गणेश एंड हनुमान आर लिंक्ड टू द शाक्त परंपरा, और इसलिए हनुमान जी की मूर्ति को मांगल्य बनाने के लिए, नहीं तो वो बहुत ही यू नो वेरी मैस्कुलिन इमेज जो है, वायलेंट इमेज है, बिकॉज उसके हाथ में वेपन्स हैं एंड ही इज फाइटिंग। लेकिन जब आप लाल लगाते हो तो वो शुभ बन जाता है, दैट इज द रीजन। आजकल लोग ऑरेंज कलर दे रहे हैं जो वैरागियों का रंग है, लेकिन मंगल रंग इज लाल, इसलिए शादी का जोड़ा भी लाल होता है, चूड़ियां लाल होती हैं, दैट इज द रीजन। ऑफकोर्स देर आर स्टोरीज की उन्होंने देखा कि सीता जी लाल रंग सिंदूर डाल रही हैं, इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर को ढक दिया, ये सब लोक कथाएं हैं। लेकिन क्रियाओं की तरफ, फ्रॉम रिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, लाल जहां लगा जाएगा, जैसे अलता होगा, ये होगा, इसे मंगल का शुभ है, शाक्त सिंबल है, देवी का चिन्ह है, तो दैट इज द पर्पस।
3: All right, thank you.

0: for the answer. Thank you.
1: Welcome, Akshata.
0: Yes.
1: तो अक्षता का क्वेश्चन वॉज अबाउट सिंदूर रंग, और ये लाल रंग जो होता है ये ट्रेडिशनल कलर है जो हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है. नॉर्मली जो मेल गॉड्स होते हैं उनको लाल रंग वेरी रेयरली दिया जाता है, क्योंकि हनुमान जी को देवी का सेवक माना गया है, वो प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं, इसलिए लाल रंग दिया जाता है.
2: क्या है हनुमान और पंचमुखी हनुमान में अंतर, बताएंगे देवदत्त. Keep listening.

0: Mirchi, it's hot.
1: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांस में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभाव पूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची.
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची.
2: द देवदत्त पटनायक शो.
1: द देवदत्त पटनायक शो
2: ऑन रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट.
0: सो नाउ आई वांट टू डिस्कस माय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमेजेस ऑफ हनुमान, जो पंचमुखी हनुमान जिसके कहते हैं. तो पंचमुखी हनुमान की मूर्ति अगर आप देखे होंगे तो इट इज नॉट, यू नो, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टैचू. नॉर्मली हनुमान जी की मूर्ति राम के मंदिर में होती है और वो वहां पे एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं राम के चरण पे. लेकिन पंचमुखी हनुमान जो होता है वो मंदिर में केवल हनुमान जी की मूर्ति होती है वो, और उनके दो हाथ नहीं, उनके 10 हाथ होते हैं और उनके एक सर नहीं, 5 सर होते हैं और एक ही सर वानर का रूप लेता है. बाकी 4 जो है, एक घोड़े का होता है, एक शेर का होता है, एक वराह या जंगली सुअर का होता है और एक गरुड़ का होता है. पंचमुखी हनुमान की स्टोरी हमें अद्भुत रामायण से आती है. अद्भुत रामायण में कहते हैं कि राम गेट्स डिसअपियर्स और उसे पाताल लोक में कोई लेके चला जाता है और हनुमान जी हैज नाउ टू डू एवरीथिंग एंड फाइंड रेस्क्यू राम. तो स्टोरी है हाउ डज हनुमान गो टू पाताल लोक. इसलिए पंचमुखी हनुमान को कभी कभी लोग पाताली हनुमान भी बोलते हैं और पाताली हनुमान कुछ मंदिरों में उन्हें अपसाइड डाउन रखा जाता है बिकॉज वो पाताल में गए हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग, ये पंचमुखी क्यों बने हैं? क्योंकि हनुमान जी वहां पे डिस्कवर्स कि वो केवल वानर नहीं है, उनके अंदर बहुत क्षमता है. वो गरुड़ के जैसे भी काम कर सकते हैं, वो वराह के जैसे काम कर सकते हैं, वो शेर की भांति काम कर सकते हैं, वो घोड़े के जैसे भी काम कर सकते हैं. उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं. ये मूर्ति है दिखाने के लिए कि जो एक वानर है वो महाबली कैसे बना. सो रामदास से महाबली की यात्रा, द ट्रांसफॉर्मेशन. जो सिंपल एक रामदास था जो इंस्ट्रक्शंस लेता था, वो कार्य करता था, जो राम बोलते थे वो करते थे, लेकिन पंचमुखी हनुमान के जगह में वो कर्ता बन जाते हैं. ही इज द पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव, ही सॉल्व्स प्रॉब्लम्स और अंदर की अपनी जो पोटेंशियल है डिस्कवर करते हैं. आई एम श्योर आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है टू डिस्कवर एंड यू मस्ट फाइंड दिस पोटेंशियल सो दैट द होल डे यू फाइंड द हनुमान इनसाइड यू एंड क्रॉस द ओशन टू सक्सेस. So, best wishes and stay tuned for more interesting questions and answers and stories on the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
3: हमें ही नहीं, हनुमान को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. कब और क्यों? बताएंगे देवदत्त.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। यू नो, मैं हनुमान के बारे में बहुत लिखा हूँ मेरी किताबों में, मेरे एसेज में। मैंने हनुमान चालीसा के ऊपर एक किताब लिखी है, माय हनुमान चालीसा, जहाँ पे यू नो हर जो दोहा चौपाई उसके अंदर इतना ज्ञान है हनुमान जी के कथाओं में कि हर लाइन में ज्ञान होता है, एक आइडिया होता है, एक थॉट होता है, एक विश, यू नो, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हनुमान जी के माध्यम से हमें कितनी चीजें बताई जा रही हैं। सो मेनी आइडियाज आर बीइंग प्रेजेंटेड टू अस। और ऐसे स्टोरीज जब आते रहते हैं, तो एक स्टोरी है यू नो विच इज यू नो लिंक्ड टू हनुमान, विच यू नो ऑलवेज रिमाइंड्स मी दैट भगवान भी कितने हम्बल होते हैं हमारे सामने। कहते हैं कि जब हनुमान जी यू नो लंका के लिए जा रहे थे, देन ही वाज यू नो वो शोर ऑफ समुद्र के बगल में थे और सब बोल रहे थे, ऑल वानर्स वर गैदर्ड ओवर देयर, सामने समुंदर दिखाई दे रहा था, द ब्लू सी स्ट्रेचिंग अक्रॉस, कहीं बियॉन्ड होराइजन में सोने की लंका थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कितने दूर है होने वाला है ये। तो सब वानर बोल रहे थे इतना दूर तो हम छलांग नहीं मार सकते, कोई बोल रहा था मैं इतना योजन, योजन मींस इट्स अ मेजरमेंट टूल कि कितने माइल्स होते हैं यू नो, तो योजन कितने योजन तुम जा सकते हो। सो कोई बोल रहा था मैं 10 योजन जा सकता, कोई 50 योजन, तो हनुमान कुछ नहीं बोल रहा था, वो चुप बैठा था। तो जांबवन जो बैर जो भालू थे वो जाके हनुमान जी से पूछते हैं कि तू कितना कर सकता है, एंड हनुमान से मुझे पता नहीं मेरे में कितनी ताकत है। इमेजिन हनुमान जी बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, ही इज फुल ऑफ डाउट। एंड दैट टाइम हनुमान जी को जांबवन उनका वर्णन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और बोलते हैं कि आप कितने महान हो, डू यू नो हाउ ग्रेट यू आर, आप शिव जी के एक अवतार हो, आप सूर्य भगवान से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, वायु आपके पिता हैं, तो यू हैव ऑल द विजडम, आप प्रिय हो राम जी के, उन्होंने आपको भाई जैसे माना है। सो इतना स्ट्रेंथ है, सो ही कीप्स प्रेजिंग हिम एंड कीप्स प्रेजिंग हिम, एंड हनुमान जब ये सुनते हैं, ही स्टार्ट्स ग्रोइंग इन साइज, ही बिकम्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर, ही बिकम्स सो बिग कि उनकी जो सर बोलते हैं कि इट गोज बियॉन्ड द स्काई, इतने लंबे हो जाते हैं, पहाड़ भी उनके सामने छोटे छोटे दिखने लगते हैं, एंड देन वो छलांग मार के जाते हैं लंका के तरफ। और मतलब हनुमान जी को भी टू डिस्कवर हिज पावर्स कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है, एंड वी ऑल हैव अ हनुमान इनसाइड अस, हम सबको मोटिवेशन चाहिए। यू नो लोग हमेशा हमें हमारी नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं कि अरे तू ये नहीं करता है, तू वो नहीं करता, तू ये नहीं करता है, बहुत कम लोग होते हैं जो हमें हमें पॉजिटिव पॉइंट्स देते हैं। यू नो भगवान की जब आरती जब हम करते हैं, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चालीसा में देखिए भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं, वैसे ही जब हम आरती करते हैं तो भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं। मतलब हर आदमी को आरती पसंद है, थोड़ा एक आध बार मेरे जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको आप प्लीज वर्णन कीजिए। टेल योर फ्रेंड्स दैट दे आर गुड एट मे बी इन पोएट्री, मे बी दे आर गुड एज क्रिएटिव पीपल, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, दे ड्रेस वेल, छोटी छोटी बातें उनके अंदर जो हनुमान है उसे जागृत करते हैं। आई थिंक दैट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी ऑफ हनुमान बिकमिंग लाइक अ सुपरमैन, जंपिंग अक्रॉस द स्काइज एंड गोइंग टू सोने की लंका। तो ऐसे ही आइडियाज हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान की जाति से जुड़ा एक और सवाल जब उठा तो क्या कहा देवदत्त ने? कीप लिसनिंग।

0: Mirchi Show.
1: Calling Dev Dutt.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
2: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे. So please ask me questions on Hanuman. Pick up the phone right now and I'm waiting for your call.
3: Hello.
2: Hello, Dev Dutt here.
3: Hello, Dev Dutt, sir.
2: Hi.
3: Hi, मेरा नाम भास्कर है and I'm a huge fan of yours.
2: Thank you so much.
3: और मेरा एक question था.
2: जी.
3: हनुमान को लेके.
2: जी,
3: तो हनुमान जी की जाति को लेके कंट्रोवर्सी हुई है. क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
2: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है. एंड यू नो, वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली. हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं, और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचा की बात नहीं होती. हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं, एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है. एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पॉलिटिकल गेम्स दैट आर बीइंग प्लेड. आई पर्सनली कीप अवे. जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं, मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती. जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात, शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं. तो हमारे शो में हम ज्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी, इनजस्टिस. वी डोंट वांट टू डिस्कस दिस जाति, सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस. ये पॉलिटिक्स होने दो ना. शास्त्रों में, या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडियंस, एंड दैट्स माय सजेशन. बेस्ट ऑफ लक.
3: थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.
2: वेलकम. तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है. जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता.
1: ऑन रेडियो मिर्ची,
0: द देवदत्त पटनायक शो. क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त. कीप लिसनिंग.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यार, हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, शो अभी खत्म होने वाला है। और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज यू नो अ गॉड हु इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी की वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते रहे। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi devdutt onmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: On Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik Show. The views expressed in the Devdutt Patnaik Show are the hosts alone, not the channels.

0: यार अक्सर मैं ये बात कहती हूँ अपने आसपास के लोगों से और खुद से भी कि द नेशन दैट आई बिलोंग टू इज प्रोक्रेस्टिनेशन।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: This is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And now you tune in with me on Mirchi। और वाकई में यार ये procrastination एक ऐसी चीज है, एक ऐसा लफ्ज है जो बड़े होते होते कब हमारी दुनिया में आ गया ना पता ही नहीं लगा। लेकिन you know, बातों ही बातों में मैंने ये भी रियलाइज किया कि बचपन में भी हम procrastinators थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं जितने आज है। हाँ, क्योंकि बचपन में अगर हम किसी चीज को टालोफाई किया करते थे तो वो ज्यादा से ज्यादा होमवर्क हुआ करता था या फिर ट्यूशन जाना हुआ करता था। पढ़ाई से एनीथिंग पढ़ाई से रिलेटेड यूज टू बी प्रोक्रेस्टिनेटेड। बड़े होते होते ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन टर्म है ये हमारी जिंदगी के हर एक पहलू में घुसता चला आ रहा है। सो मच सो दैट कि आज हम मस्ती मारने का जो चांस होता है उसमें भी प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। मतलब अगर फ्रेंड्स जो है वो कोई प्लान बना रहे हैं तो एक पल के लिए तो एक्साइटेड हो जाएंगे, लेकिन जब वो प्लान पुख्ता हो जाएगा कि बनने ही वाला है हम टालने लग जाते हैं कि मतलब यहाँ काम आ गया, वहां काम आ गया, स्टक एट द ऑफिस, आई कांट मेक इट फॉर द प्लान, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला। एंड आई रियलाइज कि एज किड्स हम कितने सही थे यार, कितनी सारी चीजें एक्सप्लोर किया करते थे यार एक दिन के अंदर। मतलब पढ़ाई चलो जबरदस्ती कर ली सो कर ली, लेकिन हर एक चीज में हम घुसे हुए होते थे। हाँ, मतलब अगर कोई कंचे खेल रहा है तो उसको बैठ के गौर से देखना कि वो कंचे कैसे खेल रहा है। भले ही मुझे कंचे खेलने ना आते हो, लेकिन मैं अपने भाइयों के साथ खड़े होके ये जरूर देखती थी कि ये कंचे कैसे खेल रहे हैं। हाँ, अगर कोई कजिन बैठ के कोई बहुत ही बोरिंग कहानी भी सुना रहा है तो उसको भी हम टालोफाई नहीं करते थे, उसको भी बड़ी इंटरेस्ट से सुना करते थे क्योंकि मेरा कजन सुना रहा है। अगर कोई बड़ा घर से बाहर जा रहा है तो हमें भी जाना होता था। हम किसी भी चीज में टालोफाई वाला जो जोन होता था ना बिल्कुल नहीं करते थे। जहां मौका मिलता था वहां चौका लगा दिया करते थे कि नहीं यार यहां पर हमें फन मिल सकता है। और आज फन चल के आता है, हमारा दरवाजा खटखटाता है, हम दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं भाई साहब कल आना। ऐसी भी क्या अडल्टिंग यार। इसीलिए कहते हैं कि जहां मस्ती मारने का मौका मिले ना यार चौका लगा दिया करो। दिल तो बच्चा है जी, और इस बच्चे को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखो यार। इनफैक्ट मैं आपको अपने एक दोस्त के बारे में बताती हूँ जिसकी आदत मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि वो ना किसी भी चीज को टालता नहीं है। मतलब मस्ती से रिलेटेड काम को डेफिनेटली टाल देगा। उसके मन का बच्चा मुझे बहुत पसंद आता है। एक दिन ना हम लोग ऑटो में जा रहे थे, अब क्या हुआ कि जो ऑटो का टायर था वो पंक्चर हो गया, जिसकी वजह से ऑटो रुक गया ऑफ कोर्स, तो काम चल रहा था। लेकिन उसने उस मौके को भी इंटरेस्टिंग बना दिया क्योंकि उसे भुट्टे वाले की दुकान नजर आ गई। वो फौरन से गया, झट से गया, पट से वापस आया, भुट्टे 3 लेकर, एक ऑटो वाले भैया के लिए, एक मेरे लिए, एक अपने लिए, और मस्त बैठ के हमने भुट्टे खाए। और उसने उस ऑटो का जो टायर पंक्चर वाला पूरा जोन और सैडनेस थी उसको हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दिया कि यार ऑटो खराब हुआ तो हमें भुट्टे खाने का मौका मिल गया। देखा, यही तो मैं कह रही हूँ, ये चीज मैंने उससे सीखी और आपको फौरन बता दी ताकि आप भी इसको इनकलकेट कर पाओ अपनी आदतों में। अच्छी आदतें हमेशा उठा लेनी चाहिए। और इसी के साथ आपकी अच्छी आदत कि मुझसे इस वक्त आके मिल लेते हो मिड डे मोहब्बत की गाड़ी में, जिसको कि अब मैं 90s के गियर में डालते हुए आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट। और सुनो जरा मेरी बात नहीं, अब ये गाना स्टे ट्यून्ड।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: 98.3 Mirchi. It's hot.
1: Sara zamana, Sara ka deewana.
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
3: सही कहा है यार, ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्यार इंसान से क्या नहीं करवा लेता है। आपने वो मूवी देखी होगी बधाई हो बधाई, अनिल कपूर वाली बधाई हो बधाई।
2: मिर्ची VCR।
3: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। आयुष्मान की बधाई हो से पहले, बहुत पहले हमारे अनिल कपूर की बधाई हो आई थी यार, और ये फिल्म भी मैंने देखी थी। मैं कोई फिल्म उस टाइम पर नहीं छोड़ती थी, केबल पे जो फिल्म आती थी अपन सब देख डालते थे। सारी नई फिल्में वर वॉच्ड एज इफ टू डू लिस्ट टिक मार्क हो गया था। बट दिस फिल्म वॉज फन यार। आई मीन क्या कॉन्सेप्ट था यार इस फिल्म का, कि एक हष्ट पुष्ट इंसान सिर्फ एक लड़की के प्यार में पतला हो जाता है। और मुझे ना बहुत मोटिवेशन मिला था ये फिल्म देखने के बाद। हालांकि तब मैंने वेट पुट ऑन नहीं किया था, लेकिन वो मोटिवेशन मुझे तब मिला जब इसकी ज़रूरत नहीं थी, और आज जब ज़रूरत है तो मिल ही नहीं रहा है। इनफैक्ट यही बात एक दिन मैंने अपने जिम में अपने जो ट्रेनर है उनको बोली थी, जब वो कंप्लेन कर रहे थे कि मैम आप रेगुलर क्यों नहीं होते हो, मैम आप डाइट पर कंट्रोल क्यों नहीं करते हो। तो मैं उनको यही कह रही थी कि सर मुझे ना प्यार में पड़ना पड़ेगा यार वेट लूज़ करने के लिए, कि यार मुझसे तो नहीं हो पा रहा, प्यार में पड़ूंगी तो या तो ब्रेकअप के चलते मैं वेट लूज़ कर लूंगी रेज में, या तो फिर मोहब्बत के चलते कि मैं अच्छी दिखूं उस तेज में, पर ऐसे हमसे तो ना हो पा रहा। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड विद दिस फिल्म, व्हाट अ फन फिल्म यार, जहां पर अनिल कपूर का ट्रांजिशन दिखाया गया है। एंड यू नो व्हाट, ही वाज इन हिज 40s एट दैट टाइम आल्सो, क्योंकि आज भी वो यंग है, तब भी वो 40s के हिसाब से भी काफी यंग थे। बल्कि सेट पर तो ये पूरी चर्चा हुआ करती थी, सतीश कौशिक जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे वो ये बात कहा करते थे कि भाई अनिल में बहुत बिजली है, यानी कि बहुत पावर है, वो इसी तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल किया करते थे कि अनिल में बहुत बिजली है, जनरेटर से भी ज्यादा। बिकॉज अनिल कपूर जब बाकी सारे लोग शूट्स के बीच में रेस्ट कर रहे होते थे, बैठे होते थे, उपासियां ले रहे होते थे, अंगड़ाइयां ले रहे होते थे, अनिल कपूर जो लोग थे ना क्रू के उनको इकट्ठा करके अंताक्षरी खेल रहे होते थे। दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू डू। आपको एक और किस्सा बताऊंगी फ्रॉम दिस फिल्म, विच इज अबाउट अ लाफ अटैक, जो कि शिल्पा शेट्टी को आया था। क्यों आया था बताऊंगी थोड़ी देर में, बट यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: बधाई हो बधाई। ये मूवी तो किसको याद नहीं है यार, अनिल कपूर, शिल्पा शेट्टी, कीर्ति रेड्डी जो अब कहीं नहीं नजर आती। तो ये फिल्म जो थी, इसको शूट करते हुए एक्चुअली हुआ ये था कि शिल्पा शेट्टी को अटैक आया था।
1: मिर्ची चैट रूम।
2: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड अगर आप सोच रहे हो कि कोई सीरियस बात है तो बिल्कुल नहीं, ये फिल्म ही सीरियस नहीं थी तो इसके सेट पे कुछ सीरियस कैसे हो सकता था। आई एम टॉकिंग अबाउट अ लाफ अटैक जो कि शिल्पा शेट्टी को इस फिल्म की शूट के दौरान एक बार आया था। हुआ ये था कि सतीश कौशिक जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे, वो बड़े मजाकिया इंसान थे तो सभी जानते हैं, और सेट पर जो माहौल हुआ करता था ना, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, एज इफ यू नो कोई पंजाबी वेडिंग हो रही हो, ऐसा सा माहौल था, इतना लाइट माहौल था। और एक शॉट में हुआ ये कि सतीश जी जब शिल्पा शेट्टी को गाइड कर रहे थे शॉट के बारे में फ्रॉम बिहाइंड द कैमरा, तो शॉट चल रहा था लेकिन वो इस तरीके के हैंड मूवमेंट्स दे रहे थे, इस तरीके की साइन लैंग्वेज यूज कर रहे थे कि शिल्पा जो है ना उनको लाफ अटैक आ गया, मतलब वो हंसते हंसते लोट पोट हो गई और वो शॉट कंप्लीट ही नहीं कर पा रही थी। 7 से 8 टेक्स लगे उस शॉट को कंप्लीट करने में, तब जाके ऊपर वाले को हश थैंक यू बोला है बाकी सारी टीम ने। और अगर ना इस सेट की और आगे बात की जाए तो ये सेट वो सेट है जहां मेरा दिल बड़ा होगा यार, अगर टाइम मशीन मिल जाए तो मैं भी जाऊं यार, क्योंकि इस सेट के जितने भी क्रू मेंबर्स थे उन्होंने इस फिल्म के बारे में जब ये शूट रैप अप हो गया था तो यही कहा था कि यार यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पंजाबी वेडिंग हो रही है, क्योंकि खाना इतना उम्दा, बिल्कुल पंजाबी, ठेठ पंजाबी खाना आया करता था, एंड ऐसा लगता था जैसे कोई शादी का बुफे लगा हुआ है। अब आपको भी लगा ना कि हाय काश हम भी उस सेट पे होते, जिस दिन मुझे टाइम मशीन मिल जाएगी ना मैं आपको भी इत्तला कर दूंगी, साथ पे चलेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ेंगे, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: 90s का वो दौर था जब एक बिस्किट के एड को भी यादगार बना दिया जाता था और इतना खूबसूरत बनाया जाता था, सो मच सो दैट कि हमारे जो फेवरेट मारी बिस्किट हुआ करते थे ना, उसका पूरा पूरा जिंगल था भाई हमारे पास।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, इसका वो जो एड था जिसमें इतना सारा केओस था कि एक बिस्किट के पैकेट के पीछे एक अंकल इतने बावले हुए चले जा रहे थे कि गिरते पड़ते जैसे तैसे वो बिस्किट के पैकेट तक पहुंच ही गए। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि बिस्किट्स जो थे वो किस तरीके से पैक हुआ करते थे। पहले कागज में पैक होके आया करते थे यार, धीरे धीरे करके फिर उनकी पैकिंग जो है वो चेंज होती गई, लोगोस बदले, कलर्स बदले। लेकिन आज भी ना, मुझे मारी बिस्किट मक्खन लगा के खाने में जो मजा आता है ना, वो और किसी चीज में नहीं आता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने स्कूल में ही सीखा था। इंटरवल में अपनी एक फ्रेंड का टिफिन खाया था और उसने मारी पर मक्खन लगाया था और मेरे घर आके मम्मा को यही बोला, मम्मा आज से मैं ऐसे ही खाऊंगी इस बिस्किट को। उसके बाद जो ये बिस्किट इतना बचा करते थे और हमेशा रहा करते थे पैंट्री के अंदर, वो गायब होने लग गए क्योंकि मक्खन लगा लगा के मैं उसको खाने की तरह खाने लग गई थी। ओह माय गॉड, बात करते करते मुंह में पानी आ गया। लेकिन अभी फिलहाल इस एड को सुन के जरा यादें ताजा करें। अच्छा, खास बात और ये थी इस एडवर्टाइजमेंट की कि इसके लिरिक्स इंग्लिश में थे एंड एट दैट टाइम इंग्लिश गानों तक हमारी इतनी पहुंच नहीं थी, तो ये जो गाना था यानी कि ये जो जिंगल था एक बिस्किट के एड का, इसे ही गा गा के हम इम्प्रेशन जमाने की कोशिश किया करते थे। और ना फ्रेंड्स, ओह माय गॉड, वो भी क्या दिन थे। इम्प्रेशन जमाने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट ही काम आ जाया करता था यार। एनीवेज, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: उफ, ये रूमर्स भी ना, इन्हीं रूमर्स के चक्कर में तबू को फिल्म मेजर साहब में कास्ट करते करते रह गए डायरेक्टर प्रोड्यूसर टीनू आनंद और अमिताभ बच्चन।
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, जब मूवी बनने वाली थी तो फिल्म मेकर्स तबू को फीमेल लीड में लेना चाहते थे, लेकिन लेकिन लेकिन उस वक्त ये रूमर्स थे कि तबू इज अबाउट टू गेट मैरिड, जिस वजह से फिल्म मेकर्स डिसाइडेड टू नॉट कास्ट हर एंड टुक सोनाली बेंद्रे फॉर द रोल इंस्टेड। बट आई वाज जस्ट वंडरिंग कि रूमर्स पर यकीन करने के बजाय सीधा तबू से ही कंफर्म क्यों नहीं कर लिया इन लोगों ने। हाँ, तब सबके पास मोबाइल फोन्स नहीं थे ना, शायद इसी वजह से क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुआ होगा, है ना। एनीवेज, कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक विद दिस, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मन मूवी से ना देर इज दिस ट्रैक जो मुझे अच्छा तो लगता है और याद भी है, लेकिन ये मुझे और खास तौर पे इसलिए याद है क्योंकि ये गाना मेरे कजन को ना चिढ़ाने में बड़ा काम आता था। उन्हें ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और जिस गाने की मैं बात कर रही हूँ जो मेरे कजन को नापसंद भी था, और अब इस गाने के बारे में एक खबर और पता लगी है, वो ये कि ये गाना ओरिजिनल भी नहीं। द सॉन्ग इज

गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं संजीव दर्शन. नाउ बेसिकली दिस गाना हैज नॉट बीन कॉपीड फ्रॉम एनी इंग्लिश और पाकिस्तानी सॉन्ग. भाई हम जा चुके हैं मलेशिया. दिस इज अ मलेशियन सॉन्ग सिदांग सिदांग साजा, जो कि इवान करके एक आर्टिस्ट है वहां पर, उनका गाया हुआ है. और सुनिए जरा कितना प्यारा लग रहा है ये गाना. हालांकि समझ में नहीं आ रहा है लेकिन स्टिल प्यारा लग रहा है.

की होनी चाहिए। लेकिन यार संजीव दर्शन ने जरा भी इतना और एफर्ट नहीं डाला कि थोड़ा अपना कुछ ओरिजिनल भी डाल देते। आई मीन ठीक है आपने एक पीस उठा लिया, लेकिन आपने तो पूरा पूरा गाना ही उठा लिया यार कॉपी करने के लिए, कट कॉपी पेस्ट। चलो इसी बात पर, भले ये गाना ना सही लेकिन मन मूवी से एक और गाना जो कि बहुत ही खूबसूरत है अलका याग्निक एंड उदित नारायण की आवाज में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आपको पता है व्हाट वाज आई सर्चिंग फॉर अ व्हाइल अगो? पोस्ट कार्ड्स।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड यार, बीइंग अ 90s किड, आई रियलाइज कि बॉस, जो मजा पोस्ट कार्ड्स में मैसेज लिखकर भेजने में था ना, वो व्हाट्सएप मैसेजेस में नहीं है। एंड यू नो व्हाट हैव आई डिसाइडेड? मैंने डिसाइड किया है टू स्टार्ट एन ओल्ड ट्रेंड दिस ईयर ऑफ सेंडिंग पोस्टकार्ड्स एंड बर्थडे कार्ड्स टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज़ जो मजा पोस्ट में है ना, वो मजा टेक्नोलॉजी में नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि मेरी पोस्ट यानी पोस्टकार्ड्स पोस्ट से ही आएंगे, बिकॉज़ आई हैव ऑर्डर्ड देम ऑनलाइन। और एक बात और, इफ यू वॉन्ट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम मी, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल जो कि है मिर्ची सारा, उस पर डीएम करो और लिखो कि हाय सारा, वेटिंग फॉर योर चिट्ठी। फर्स्ट 5 मैसेजेस को आई विल बी सेंडिंग अ हैंड रिटन पोस्ट कार्ड। चलो ना यार, ये पुराना वाला ट्रेंड फिर से शुरू करते हैं, मजा आएगा। वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट। और अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Gold Spot,
2: यादों को चिट्ठी।
1: यार आज कोई भी कोल्ड ड्रिंक उठा लो, बट नो वन मैचेस योर वाइब। तुम सिर्फ गोल्ड स्पॉट नहीं, गोल्ड की पूरी ब्रेक थी। तुम्हारा असर हमारी यादों पर इतना भारी रहा है। अक्सर जब कोई कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है ना, तो बातों ही बातों में तुम्हारा जिक्र निकल ही जाता है कि यार कहीं से कोई गोल्ड स्पॉट ला दे तो मजा आ जाए। आई रिमेम्बर बचपन में हमारे घर में काम करने वाले यूसुफ भाई ना, हम बच्चों को खुश करने के लिए हमें गोल्ड स्पॉट पिलाया करते थे। कांच की कर्वेशियस तुम्हारी बोतल विद अ टिन का ढक्कन, उफ तुम वाकई चीज बड़ी थी मस्त मस्त। आज भी अगर कोई डार्क ऑरेंज कपड़े पहनकर आता है ना, तो उसका नाम उस दिन गोल्ड स्पॉट ही रखा जाता है। वैसे नाम बड़ा सही था यार तुम्हारा, गोल्ड स्पॉट। बट आई वंडर यही नाम क्यों? एंड वेल शायद कुछ बातें मिस्ट्री रह जाती हैं। अगर तुम आज भी होती तो कहीं किसी न्यूज आर्टिकल में मेरे सवाल का जवाब भी मिल जाता। इस गर्मी में तुम्हारी ठंडक को याद करती तुम्हारी सारा, जो आपको यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। और वैसे गोल्ड स्पॉट पीने के बाद जो दिल का हाल हुआ करता था ना, वो इस गाने के जरिए अब आपसे बयान किया जाएगा। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: इस गाने में सवाल है, लेकिन सवाल इश्क पर है, और मैं तो कहती हूँ कि इश्क अपने आप में ही एक सवाल है, और जिसने ये सवाल समझ लिया ना, अगला काम उसका ये हो जाता है कि समझना उसे ये बवाल है। उदित नारायण, विभा शर्मा की आवाज में इश्क मूवी से दिस गाना, इस कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: इश्क हुआ टड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ कैसे हुआ? अच्छा हुआ, जैसे हुआ। और प्यार चीज ही ऐसी है यार, वाकई में। मतलब इश्क जो है ये एक सवाल बनकर ही रह जाता है। आपको पता ही नहीं लगता यार कि कब आपको मोहब्बत हो जाती है। वो तो बहुत टाइम बाद आपके दोस्त आपको बता रहे होते हैं कि भाई ये सारे जो तुम्हारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं ना, ये मोहब्बत के हैं। लेकिन इंसान भी ना बड़ी कमाल चीज है, वो जब मोहब्बत में होता है ना तो वो उसे नकार रहा होता है, कह रहा होता है नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने तो प्लान ही नहीं किया था ना कि हमें प्यार में पढ़ना है, या हम प्यार में पढ़ेंगे, या हम प्यार में पढ़ने वाले हैं। लेकिन प्यार चीज ही ऐसी है यार, बिना बताए दबे पाँव कब आपकी जिंदगी में एंट्री ले लेता है ना, आपको भी नहीं पता लगता। वही वाली बात है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि आसपास के लोग आपको बता रहे होते हैं कि तुम्हें तो प्यार हो गया है, सिम्टम्स वही है कि रातों को नींद नहीं आ रही है, गालों का कलर जो है वो रेड हो रहा है, वो इंसान आसपास कहीं नजर आता है तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, शर्म आने लग गई है तुम्हें आजकल, सब कुछ ठीक तो है, प्यार व्यार तो नहीं हो गया है। अगर आपको भी यही सिम्टम्स नजर आ रहे हैं ना अपने अंदर, तो समझ जाइए कि आपको लवेरिया हो चुका है। इसी के साथ यही गाना लगाते हुए अब आपसे कहती हूँ, हम हराई प्यार के लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और मुझसे मिल लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

सीरत फितरत।

Mirchi. It's hot.

0: It's hot. Mirchi. It's hot.
1: तेरी मम्मी की जय

डी लटीना चिकन चमेली कट कटरीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: भीड़ में रह के भी अकेला महसूस करना इज माई बिगेस्ट फियर।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पिटी उंडन हो आप, और इस दुनिया में हर दूसरे इंसान का कोई ना कोई भय, कोई ना कोई फियर तो जरूर रहता है यार। और अचानक से डर भय की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज रिसेंटली एक इंटरव्यू में इम्तियाज अली ने अपने डर की बात शेयर की, एंड फॉर हिम इट इज अकेले खाना खाना। वेल, ये थॉट जब मेरे दिमाग में आता है देन आई एम क्वाइट यूज टू इट, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ और ऑन अ डेली बेसिस में अकेले ही खाना खाती हूँ, सो आई एम ओके डूइंग दैट। बट एट द सेम टाइम अगर 10 लोग हैं मेरे आस पास, मैं उस भीड़ में हूँ फिर भी अकेला महसूस कर रही हूँ, That is something जो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाता। एंड कसम से बता रही हूँ, I get into a panic attack situation। वैसे I'm sure आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई ऐसा डर तो जरूर होगा यार। So let's share ना, because you know sharing is caring। एक दूसरे का केयर कर सकते हैं। MIRCHISHRUTI यानी मिर्ची श्रुति के फेसबुक या इंस्टा पे साथ कनेक्ट करके। Till then stay tuned to मिर्ची, it's hot। कर रही हूँ, दैट इज समथिंग जो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाता। एंड कसम से बता रही हूँ, आई गेट इन टू अ पैनिक अटैक सिचुएशन। वैसे आई एम श्योर आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई ऐसा डर तो जरूर होगा यार। सो लेट्स शेयर ना, बिकॉज यू नो शेयरिंग इज केयरिंग। एक दूसरे का केयर कर सकते हैं। MIRCHISHRUTI यानी मिर्ची श्रुति के फेसबुक या इंस्टा पे साथ कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट। के फेसबुक या इंस्टा पे साथ कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। तेरा यार हूँ मैं, नहीं उस गाने की बात नहीं कर रही, बट इसी नाम से एक मूवी आ रही है जिसके साथ ही डायरेक्टर इंद्र कुमार के साहबजादे अमन इंद्र कुमार आकांक्षा शर्मा के ऑपोजिट अपना हिंदी फिल्म डेब्यू करने वाले हैं। फिल्म का टाइटल ट्रैक रिलीज किया गया है, विच इज गेनिंग अ लॉट ऑफ आइज, बट मेरे हिसाब से तो यार मेरी नजर नहीं हट पा रही क्योंकि अमन इंद्र कुमार का चेहरा मुझे थोड़ा एनीवेयर विल नॉट गेट देयर। बट एक्चुअली इस गाने की अगर बात करें तो इसमें सचेत टंडन एंड पायल देव की आवाज है, कुणाल वर्मा के लिरिक्स हैं एंड इसे कंपोज किया है पायल देव के साथ साथ आदित्य देव ने। एंड द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 24th ऑफ जुलाई, जो एक्सप्लोर करने वाली है थीम्स ऑफ लव, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। लेट्स टेक अ मोमेंट फॉर मिर्जापुर द मूवी का टीजर। भाई साहब क्या ही धमाल बवाल कमाल का टीजर है, और जब इस छोटे से टीजर ने आपके अंदर के सारे इमोशंस को एकदम से उथल पुथल कर दिया है तो सोचिए फिल्म क्या ही कमाल करेगी जो रिलीज हो रही है ऑन द 4th of September। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। रजनीकांत की अपकमिंग हाईली अवेटेड फिल्म जेलर 2 की बात कर लेते हैं, जिसमें ऋतिक रोशन का कैमियो होने वाला है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नेल्सन दिलीप कुमार एंड उन्होंने ऋतिक के इस कैरेक्टर को काफी लार्जर देन लाइफ रखा है, जिसकी शूटिंग ऋतिक ने रजनीकांत के साथ कंप्लीट भी कर ली है। बाकी की डेट्स मिलते ही आपको जरूर बताऊंगी, बट अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: मैं निकला

Mirchi, it's hot. Mirchi,